नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने

0: में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: આપે ટ્યુન કર્યું છે 96.7 FM પર વિવિધ ભારતીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવાનું અમદાવાદ કેન્દ્ર। મિત્રો, સંગીત એ આત્માની ભાષા છે અને જ્યારે સંગીતમાં ભક્તિ ભળે ત્યારે મન, મસ્તક અને આત્મા ત્રણેયને શાંતિનો અહેસાસ થાય છે। તો મિત્રો, ભક્તિરસમાં તરબોળ થવા, પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવા અને સંગીતના સુમધુર સ્વરો સાથે અંતરના દ્વાર ખોલવા હું જાનકી આપ સૌ માટે લઈને હાજર છું ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના।

कृष्ण को पुकार लगाई। कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकालकर बाहर। सूरदास तो समझ गए ये और कोई नहीं है, ये मेरे कन्हैया हैं। पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास बोले नहीं, तुम और कोई नहीं, मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें कुएं में गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास जी ने कहा नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही हो मेरे कन्हैया। और कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए। सूरदास

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुने श्री रामचरित मानस का भाग 199।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है, जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस श्रृंखला की कड़ी में

तो कर्नाटक रागों के बारे में कुछ रोचक विषयों पर आधारित है। मैं ऐसे दो रागों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी जो मंगलम गाने में प्रायः उपयुक्त होते हैं। ये दो राग हैं सौराष्ट्रम और राग मध्यमावती। मंगलम एक ऐसा बंदिश या कॉम्पोजिशन है जिसे हर महफिल या बैठक के अंत में पेश किया जाता है। शास्त्रानुसार मंगलम गाए या बजाए बिना प्रोग्राम का समापन करना बहुत ही बुरा माना जाता है।

कॉम्पोजिशन है जिसे हर महफिल या बैठक के अंत में पेश किया जाता है। शास्त्रानुसार मंगलम गाए या बजाए बिना प्रोग्राम का समापन करना बहुत ही बुरा माना जाता है। मंगलम में प्रायः प्रार्थना होती है कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, और इस मंगलम को पेश करने की विधि ज़्यादातर दो होते हैं। एक तो हुआ राग सौराष्ट्रम में त्यागराजा द्वारा रचित मंगलम कीर्तना गाने का, जिसके शब्द हैं पवमान सुतुड़ु बट्टु पादार विंद मुलकु नी नाम रूप मुलकु नित्य जय मंगलम। और दूसरी प्रथा है राग मध्यमावती का छोटा सा नमूना गाकर या बजाकर समाप्त करने का। कभी कभी तो दोनों ही करते हैं, अर्थात सौराष्ट्रम में पवमान सुतुड़ु बट्टु गाकर उसी के साथ अंत में एक छोटा सा टुकड़ा राग मध्यमावती में भी जोड़ देते हैं। अब आप सवाल करेंगे, ऐसा क्यों? राग सौराष्ट्रम और मध्यमावती को अंत में क्यों गाया जाता है और उन्हें मंगल राग क्यों माना जाता है? कारण जी ऐसा दिया जाता है कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती में स्वर जो लगते हैं, स्वर समूह इस तरह के हैं जिनसे मंगलमय माहौल उत्पन्न होता है और शांति होती है। अगर महफिल के दौरान कुछ ऐसे राग पेश किए गए हैं जिन्हें विवादी राग कहते हैं, यानी कि जिनके स्वर समूह अलग प्रकार के हों, तो उन रागों से उत्पन्न होने वाले चंचल और कम शांति वाले रस या सेंटिमेंट्स को मिटाकर शांति के साथ प्रोग्राम समापन करने के लिए मंगलम गाते हैं, ताकि श्रोतागण अपने कानों में इस मंगल रागों की गूंज के साथ घर लौटें। राग सौराष्ट्रम को कभी कभी प्रोग्राम के पहले आइटम में भी पेश करते हैं, लेकिन पवमान इस कीर्तन को शुरू में कभी भी नहीं गाया बजाया जाता है। पवमान के बाद उठ जाना चाहिए, और अगर पवमान गाने के लिए समय न हो तो कम से कम दो चार टुकड़े राग मध्यमावती में पेश कर दें और फिर ख़त्म कर लेते हैं। आज राग सौराष्ट्रम में पवमान सुतुड़ु मंगलम सुनाने से पहले मैं यह बता दूं कि राग सौराष्ट्रम 17वां मेलकर्ता सूर्यकांतम का जन्य राग है और हिंदुस्तानी पद्धति के आनंद भैरव से थोड़ा कुछ मिलता जुलता है। स्वर जो लगते हैं वे हैं कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद, अर्थात पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में बिलावल के स्वर लगते हैं। चलन इस प्रकार है, सुनाती हूँ।

ये हुआ राग सौराष्ट्रम, जिसमें ज़्यादातर मंगलम गाते हैं। राग मध्यमावती औडव राग है, जिसे हिंदुस्तानी पद्धति में मध्माद सारंग कहते हैं। इसमें लगने वाले स्वर इस प्रकार हैं: शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम और कोमल निषाद, यानी कि गांधार और धैवत वर्ज्य हैं, जैसे कि मध्माद सारंग में भी वर्ज्य हैं। मध्यमावती का चलन इस प्रकार है, सुनिए।

ये था कर्नाटक शैली में राग मध्यमावती। श्रोताओं, अब इस कड़ी के साथ कर्नाटक रागों के बारे में एक श्रृंखला का समापन करते हुए कल से पेश करूंगी महाराजा स्वाति तिरनाल के कुछ हिंदी भाषाओं में रचनाएं। तो अब सुनिए एमएस सुब्बलक्ष्मी के स्वर में मंगलम पवमान सुतुड़ु बट्टू, जिसके अंत में कुछ क्षणों के लिए राग मध्यमावती का भी झलक है। कल मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।

ये था एम एस सुब्बलक्ष्मी के स्वर में राग मध्यमावती। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती।

0: अभी आप सुन रहे थे एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत पद्धति के ऐसे रागों की चर्चा जिनसे जुड़ी हैं कुछ पुरानी मान्यताएं। आप तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी शकुंतला नरसिम्हन। कार्यक्रम को जारी रखते हुए शकुंतला नरसिम्हन कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा करेंगी कल से।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।
2: FM पर आप है विविध भारती के संग। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक मा अरे वाह
2: असानी
3: अजाने लिंक्स पर क्लिक ना करो RBI कहे छे
2: जानकार बनो सतर्क रहो।
4: सखी सहेली दर मंगलवारे अने शुक्रवारे बपोरे 3 वागे प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती।
5: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मुकेश की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, मजदूर सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म तकदीर का गीत था उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा तिमोथी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की
7: डोरी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे।

0: राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे, विदेश मंत्री जयशंकर।

0: जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मोज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मोज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठकर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मनचाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, शीतल हवाओं की ताजगी लिए आपके रेडियो सेट पर शुरू हो चुका है कार्यक्रम चित्रलोक। गीतों की सुरीली तान और सुबह की चहल पहल, सब कुछ हर रोज एक नया रंग भरता है हमारे जीवन में। कुछ ऐसे ही

गीतों को हम लेकर आए हैं आज आपके लिए चित्रलोक कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का प्रोग्राम चित्रलोक में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तर्जर आवाज थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी केदारनाथ। श्रोताओ, आज विश्व फुटबॉल दिवस है जो फुटबॉल को लेकर संगठन और इस खेल से जुड़े लाभ के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर मनाया जाता है, जो संस्कृतियों और समुदायों के बीच एक कड़ी का काम करता है। शांति और सामाजिक समावेश की भावना हो सभी वर्ग, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी इस खेल में समानता हो, ऐसी बातों पर जोर देता है आज का ये विशेष दिन।

जैस्मिन सेंडलर्स और सतेंद्र सरताज की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। शाश्वत सचदेव का संगीत था और सतेंद्र सरताज और जैस्मिन सेंडलर्स का लिखा भी हुआ ये गीत था। फिल्म थी धुरंधर द रिवेंज। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिर एक बार इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: शिवम पाठक की आवाज में आप सुन रहे थे पद्मावत फिल्म का ये गीत। एएम तूरस की बोल थी संजय लीला भंसाली की तर्ज थी। श्रोताओं, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस की आज जन्म जयंती है। आज ही के दिन सन 1886 में बंगाल प्रेसिडेंसी के बर्दवान में सुबलदाह नामक गांव में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। उस समय ब्रिटिश भारत में देशवासियों की तकलीफें, क्रांतिकारी आंदोलन, जब तक पड़ते अकाल और संकटों से जूझते दौर ने रास बिहारी बोस पर कुछ ऐसा असर डाला कि बड़े होते होते वो क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकर्षित होते गए। चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद देश सेवा से पूरी तरह से जुड़ गए। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को उजागर करना, देशवासियों को परतंत्रता से आजाद होने के लिए प्रेरित करना, संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करना इत्यादि के लिए वो हमेशा सक्रिय रहे और लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। इस सिलसिले में देश विदेश का दौरा भी उन्होंने किया। 1912 में अनुशीलन समिति में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर विद्रोह में सक्रिय रहे रास बिहारी बोस। ब्रिटिश सैनिकों के हाथ न आए और अंतर और राष्ट्रीय क्रांति को संचालन करते रहे, इसलिए रास बिहारी बोस जापान चले गए। 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस की भारतीय राष्ट्रीय लीग की सैन्य शाखा के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। आजाद हिंद आंदोलन के ध्वज का चयन भी उन्होंने किया और आजाद हिंद सेना की सत्ता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। रास बिहारी बोस को जापान सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के प्रति सेवा में समर्पित कर दिया। रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना भी की। वो युगांतर से भी जुड़े रहे और आजीवन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। उनकी जीवन संगिनी का नाम था तोशिको बोस। आगे चलकर तपेदिक की बीमारी से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया, जिससे वो उबर न पाए और 21 जनवरी सन 1945 को इस आसार संसार को त्याग कर अनंत पथ पर चले गए। हम महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस को नमन करते हैं।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

तुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: फिल्म देवदास का ये गीत था। गीत और संगीत थे पंडित बिरजू महाराज के। पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्ण मूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओ, भारतीय सिने जगत के जाने माने अभिनेता और फिल्मकार सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। इनका असल नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे शख्सियत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लगभग 5 दशकों से ज़्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में काम किया। एक ही रास्ता, मदर इंडिया, सुजाता, गुमराह, वक्त, हीरा खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, छाया, गबन, जाग उठा इंसान, आम्रपाली, पड़ोसन, रेशमा और शेरा, ऐसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में सुनील दत्त ने दी। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सुनील दत्त ने अभिनेत्री साधना, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयंती माला, नूतन और नरगिस जैसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ बेहद सफल फिल्में की। बाद के दशकों में वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस उनकी शरीके हयात थीं। नम्रता दत्त, प्रिया दत्त उनकी बेटियाँ हैं और सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त उनके बेटे हैं। आज ही के दिन 25 मई 2005 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तमाम पुरस्कार तो उन्होंने अपने नाम किए ही। 1968 में अभिनेता सुनील दत्त को पद्मश्री और 2005 में मरणोपरांत फाल्के रत्न पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया।

द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी कमाल खान की, रजत अरोरा के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। श्रोताओ, आज सिनेमा जगत के यानी भारतीय सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर था। इनकी मुलाकात संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई और दोनों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनका संगीत आज भी उतना ही मशहूर है। लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन के साथ साथ तमाम और वाद्यों को बजाना सीखा। 1963 में इस जोड़ी ने फिल्म पारसमणि के लिए कालजयी गीतों को स्वरबद्ध किया। इससे पहले संगीतकार लक्ष्मीकांत ने बतौर बाल कलाकार फिल्म भक्त पुंडलीक और 1950 की फिल्म आँखें से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के पत्थर के सनम, इज्जत, साजन, अनजाना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गीतों को संगीत से सजाया इस जोड़ी ने, और लगभग चार दशकों तक सुरीले संगीत का उनका सफर चलता रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 फिल्मों से अधिक में इन्होंने गीतों को संगीत से स्वरबद्ध किया। हम संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

तो ये था कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं इजाजत आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

0: मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।
1: जब

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निकल

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कार

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम

0: के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: यार साचू कहूं ने, हजी तो उनाळानी शुरुआत थई छे ने त्यां 7-7 हजार ना लाइट बिल आवा मांड्या छे। वाइफ तो क्यार नहीं कहती थी के सोलर पैनल नंखावी दो, सरकार सबसिडी पण आपे छे। मैं जेमने पण पूछ्यु ने, बधाना लाइट बिल हवे तो जीरो आवे छे, एटले आ वखते तो सोलर पैनल नंखावी ज देवी छे। ज्यारे वीजळी मफत मळती होय तो शुं काम जती करवी, तमे पण मोडुं ना करो, नंखावी ज दो। पीएम सूर्यघर मफत वीजळी योजना, जोड़ावा माटे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: धूम मस्ती धूम कार्यक्रममां हवे सांभळीए बेनी दयाल अने शेफालीना स्वरमां ये जवानी है दीवानी फिल्मनुं आ गीत। संगीतकार प्रीतम अने गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य।

FM 96.7 MHz पर आप सांभळी रह्या छो विविध भारतीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानुं अमदावाद केन्द्र। प्रस्तुत छे थीम आधारित गीतोनो कार्यक्रम दिल से।

अलका याग्निक अने सोनू निगमना युगल स्वरोमां आप सांभळी रह्या छो कभी खुशी कभी गम फिल्मनुं आ प्रथम गीत, जेमां संगीत आप्युं छे राजेश रोशने अने शब्दो लख्या छे देव कोहलीए।

आप सामने रहा छो उदित नारायण ने अलका याग्निकना युगल स्वरोमा फिल्म कुछ कुछ होता है नुआ गीत जेमा संगीत छे जतिन ललित नु अने शब्दों लख्या छे समीरे।

रहता है चारों तरफ से फूल, कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिलता है क्या खुश मिजाज है। आवाज पर आपने संभावी मिली फिल्म नु गीत लता मंगेशकर ना स्वरमा जिमा संगीता पीछे एसडी बर्मने अने शब्दो लिख्या छे योगेशे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती हैं कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज़ कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई बाल जाल बुन सकूं, पर सच तो ये है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नज़ारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफ़र, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफ़र भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफ़र में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफ़र कट जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहली बार पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी भाग

आती ज़रूर है, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शोर नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है। ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफ़र। और सुरीला सफ़र का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा। बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं। आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा ज़रूर। और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

कागज कलम उठाओ, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। शायर नहीं तुम, जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो। जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो। हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है, और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा, ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है? और बहुत खूबसूरत सा गीत है, और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है, और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़ें इस धारा के साथ।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफ़र, और इसी सफ़र में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ। और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारी एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 ज़रूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफ़र सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप ज़रूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो ज़रूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

0: સખી સહેલી દર મંગળવારે અને શુક્રવારે બપોરે 3 વાગે પ્રાયોજક દેવદર્શન ધૂપ અગરબત્તી.
1: इस गीत के गीतकार कौन हैं? तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं. और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं. तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं. तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं. हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है. पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है जीवन में, ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें. ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है. और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, ज़रूर से बताइएगा. लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा. और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत. अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, ज़रूर से बताइएगा.

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता लिख एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई और हंसी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफ़ी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सब ने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी, यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: FM 96.7 MHz पर आप ट्यून करो विषय विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा नु अहमदाबाद केंद्र। श्रोता मित्रों, समय थवा जई रह्यो छे बपोरना 2:15 नो। थोड़ी जी क्षणों में आप सांभळशो दोपहर समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में

0: वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्य

0: सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना।

0: भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ। ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकलें वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकलें। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल। आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं जो एक बिल्कुल गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली

0: के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दया रे दया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू, बहू ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला ले।

0: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लाओ।
1: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
2: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
1: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
0: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
2: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
3: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
2: 7 बजे सुबह।
1: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
2: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
0: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
1: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
2: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
0: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
2: क्या जाए? हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण।
4: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
0: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए?
1: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
2: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी? हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
0: अरे बाप,

0: अरे बाप, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
1: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली! अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही हैं? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
2: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
1: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
0: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
1: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
0: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे।
1: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
3: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
2: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
0: सही कहा पंडित जी। अब तो जो नाच नचाओगे, नाचना ही पड़ेगा।
1: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
0: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई। अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
1: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
0: अच्छा,
1: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा। और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
0: ऐसा?
1: हरे कृष्ण।
4: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी के टोन तो देखो।
1: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
2: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
5: अरे अम्मा जी,
0: हाँ,
5: ये तो
0: क्या हुआ, बोलो तो।
5: अरे हुआ का,
3: अरे
5: बताओ
3: का बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
1: क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार हैं: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की बिल्ली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। हाँ। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे। अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: शरीर के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही।

0: प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत ज़रूरी है,
1: बहुत ज़रूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मज़ेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पर कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा इसमें खेलने में
0: कैलोरीज यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात।
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ। कहते हैं
1: ना, जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
0: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
0: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी, और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जब बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
1: जी।

हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपने अपनी

0: होती है पसंद की, और किसी ना किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे ज़मीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: लगता है कि ये भी वो

0: पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए, और जब हम साथ में खा रहे होते हैं ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वो चीज़ वही चीज़ खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
1: और आरती एक चीज़ और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पूड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का अचार खुलता है, सारी खुशबू हमारे तक आ जाती है।
0: जी हाँ, और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
1: जी बिल्कुल, और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
0: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये ज़रूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें, बहुत ज़रूरी है।
1: लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
0: क्या?
1: वो होता है टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
0: सबसे पहला काम,
1: सबसे पहला काम, अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीज़ें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
1: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये सही कहा,
1: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीज़ें
0: जरूर
1: होना चाहिए।
0: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है, साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए, सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए, बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत ज़रूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें, यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें, यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियाँ जब घूम घूम के चलती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई

0: दान आप अवश्य रख लें,
1: बिल्कुल साथ
0: और
1: में
0: चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफ़र सुरीला हो जाता है, और अगर सफ़र ट्रेन से हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी टकोर, मतलब जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज़ कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियां दे रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, एक ऐसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज़ चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मज़ा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज़ में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीज़ें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, तो सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें, और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें।
1: बिल्कुल,
0: रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए।
1: अच्छा।
0: मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है

0: उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं और जब चावल पक जाएं तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
1: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
0: बहुत अच्छा लगेगा,
1: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग।
0: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: सूदिंग, सूदिंग
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा एक जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल। हमारी एक और श्रोता लिखती है, आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है। विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ। हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत
2: है, ऐसे
1: बहुत
2: ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए। जिंदगी खुश रहने के लिए है और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही। समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सभी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड

0: और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमज़ोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी
1: T3 T4 ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोज़ाना खाते हैं ये सारी चीज़ें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है, दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक ग्रंथि होती है, वहाँ से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो।
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च सोशल मीडिया काफ़ी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीज़ों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा। इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा, तो
0: अच्छा
1: ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में भी इंसान पतला होता रहता है होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज़ वाला है इसलिए पतला हो रहा है या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए।
0: याराना फिल्म का गाना है,
1: याराना
0: किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज़ कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज़ वो किया है
0: सप्लीमेंट।
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हज़म नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना

0: रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते हो।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आते हैं जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
0: जी।
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज़्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडी में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: और ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
1: पॉजिटिव
0: जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
1: हाँ, रेंज के बाहर,
0: रेंज के बाहर, तो आप क्या

0: मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: जी, जी जी।
1: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि हाँ, ये लेवल क्या है,
1: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
0: जी जी। तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
0: काला बाजार।
1: काला बाजार
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज़ ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज़ ज़्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?

0: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
1: जी जी,
0: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब लूज मोशंस।
1: जी।
0: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन एंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये गलत है
1: जी।
0: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
1: इसका
0: क्या है,
1: किधर है।
0: एग्जैक्टली रूट, जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीज़ें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
1: जी,
0: क्योंकि डायबिटीज़ में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर लें या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
1: जी।
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती है।
0: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
0: हाँ।
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: लेकिन
0: है,
1: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज़्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूँगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है आग बबूला होना।
0: जी जी
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है।

0: होती है, क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है, अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है, उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूज़िक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ़ बनाते, ऑल इज़ वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो वाला ना,
1: सारी विषैली चीजें,
0: हाँ,
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
0: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंगवर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं
1: जी,
0: और वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज़ तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना ज़रूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना ज़रूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है,
1: दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज़्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,

0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है. तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो. थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल. आयोडीन का पेशेंट उसी अगर उससे देखा जाए वो बेचारा सा
1: मायूस
0: सा बेचारा, हर एक चीज़ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता. ये सारी चीज़ें उसमें होती. अब यहाँ पे आता है जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरॉक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरॉक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े मगर पेशेंट सफरर है. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज़ बंद कर दीजिए.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है. हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है. और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है. तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ
0: रहा है. सामान्य अवस्था. डिजीज होता क्या है, डिस ईज. जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है. तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है.
1: जी जी. और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका. तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत. क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती. इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है. सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम. व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है. आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो. सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए. और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा. बिल्कुल नहीं. 2.5 से 3 लीटर काफ़ी है आपके बॉडी के लिए. इससे जब ज़्यादा पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज़ उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूँगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊँगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा.
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं. किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है.
1: ओहो,
0: यस. इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया. और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीज़ें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा.
1: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है रखना. और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही.
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें.
0: सबसे पहला चीज़ जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो चाइनीज फूड में ज्यादा इस्तेमाल होता है. बिल्कुल सही बोला है.
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए.
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए.
0: हाँ, कम कर दीजिए. मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए. अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा. और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका

0: मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज़ होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
0: एक
1: चलते
0: अच्छा सा
1: चलते।
0: गाना चलते चलते मैं हूँ।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज़ में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नज़दीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूँगी मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए।

बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

नमस्कार श्रोता मित्रों, 96.7 FM पर विविध भारतीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानो आ अमदावाद केन्द्र छे। अत्यारे सांजना बराबर 5 थई रह्या छे। अमारी आजनी अने सांजनी बीजी सभानो अहीं प्रारंभ थाय छे। सभानी शुरुआतमां प्रस्तुत करीए छीए हिंदी फिल्मी संगीतनो कार्यक्रम सरगम। कार्यक्रमनी शुरुआतमां आप सांभळशो मोहित चौहानना स्वरमां जब वी मेट फिल्मनुं आ गीत। संगीतकार प्रीतम, गीतकार इरशाद कामिल।

कार्यक्रम में आप सांभळी रह्या हता मोहित चौहानना स्वरमां जब वी मेट फिल्म थी आ गीत। हवे पछी आप सांभळशो श्रेया घोषाल अने सोनू निगमना स्वरमां ओम शांति ओम फिल्म थी आ गीत। संगीतकार विशाल शेखर, गीतकार जावेद अख्तर।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

हजारों ख्वाब रोशन कर लगती सी।

0: ए आर रहमान और सुखविंदर सिंह का गाया देशभक्ति गीत सुना। संगीत तैयार किया था ए आर रहमान ने, बोल समीर के थे। फिल्म का नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: आप सांभळी रह्या छो जयमाला कार्यक्रम। थोड़ी क्षणों में बराबर 7:10 प्रादेशिक समाचार आप सांभळशो। ત્યારબાદ પુનઃ 7:20 થી જયમાલા કાર્યક્રમ આપ માણી શકશો।

इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए निखिल विनय का संगीतबद्ध किया और फैज अनवर का लिखा गीत, आवाज चित्रा की फिल्म का नाम तुम बिन।

ने फैज अनवर का लिखा गीत सुना, आवाज दे रही थी चित्रा सिंह, फिल्म का नाम था तुम बिन। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए बॉबी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाजों में। बोल लिखे हैं विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: लीजिए सुनिए सड़क फिल्म में अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को बोल हैं समीर के।

अभी आपने संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया सड़क फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गौरवमय न्यू वर्ष, पेढ़ियों बदलाए, समय बदलायो, पर हमेशा आपनी साथे रही आकाशवाणी। आकाशवाणी न्यू वर्षे पण एटली ज ताजगीनो अनुभव करावती। जी हाँ दोस्तों, श्रोताओना हृदय में तारीख 8 जून 1936 थी सतत आपनी सेवा मां आकाशवाणी। आकाशवाणी एक मेघनो 90 वर्षनो साथ, एक अकबंध अतूट विश्वास, इतले आकाशवाणी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संगत भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, हिमालय के विस्तार तक होती है।
2: થોડીક ક્ષણોમાં 7:50 મિનિટે ગુજરાતીમાં સમાચાર આપ સાંભળી શકશો।

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का पहला भाग सुनवा रहे हैं। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: विक्रम,
1: ऐसे ही मैंने सोचा पूछ लूं, आज शाम को तो आ रहे हो ना?
0: कहाँ?
1: क्यों भाई, आज कमला के यहाँ?
0: कमला के यहाँ? वहाँ क्या है भाई?
1: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है ना?
0: मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इनविटेशन आया नहीं। व्हाट्स द ओकेजन?
1: अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
0: होगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
1: चलो मैंने बता दिया, काफी है, अब आ जाओ। बहुत से पुराने यार दोस्त मिलेंगे, खूब हंगामा रहेगा 6:30 बजे के बाद किसी वक्त भी।
0: मुश्किल है यार।
1: फॉर्मल इनविटेशन के बिना जाना शान के खिलाफ है क्या?
0: क्या बात करते हो यार, कमला के यहाँ पार्टी हो तो फॉर्मेलिटी कैसी?
1: मुझे यकीन है उसने तुम्हें इनविटेशन कार्ड जरूर भेजा होगा, हो सकता है डाक में कहीं रह गया।
0: नहीं नहीं ये बात नहीं, इनविटेशन की ऐसी कोई बात नहीं। यूं भी कमला से मिले कितनी देर हो गई है मुझे, कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे, हो सकता है साल ही गुजर चुका हो। मैं खुद कई बार सोच चुका हूँ कि चल के उसे मिलाऊं, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता यार। देखो ना 6 बज भी चुके हैं और मैं अभी तक ऑफिस में ही बैठा हूँ।
1: लेकिन वहाँ तो 6:30 बजे के बाद पहुँचना है यार।
0: मैं जरूर आ जाता शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन कर देते। अब शाम को मुझे एक और पार्टी में जाना है, वहाँ भी बस शक्ल दिखा के भागूंगा। 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है मुझे, हेड ऑफिस से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, फिर जाने उनके साथ कितनी देर लग जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: देख लो वक्त मिले तो आ जाना।
0: भाई मुश्किल ही है, फिर भी कोशिश करूंगा, मगर प्लीज कमला से कुछ ना कहना।
1: नहीं
0: नहीं। थैंक्स फॉर कॉलिंग।
1: बाय बाय।
0: बाय बाय। क्या लिखा था?
2: कॉपी ऑफ विच इज
0: बीइंग एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एटसेट्रा एटसेट्रा।
2: नेक्स्ट सर?
0: नहीं बस, बाकी ये खत कल सुबह आकर करेंगे। थैंक यू, बस जाकर उनको जल्द से टाइप कर लो, मुझे जाना है।
2: यस सर, इन ए मिनट।
0: सुनो, आज की डाक से मेरा कोई पर्सनल खत तो नहीं आया?
2: नो सर, डाक तो मैंने सब आपको दे दी थी। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, शायद मेरी
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं होगा, मैं कोई खास खत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो देख लो शाम की डाक में शायद।
2: यस सर।
0: विक्रम? यस सर। जी हाँ जी हाँ, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जी हाँ जी हाँ, आई शेल एक्सप्लेन टू हिम सर। यस सर, वेरी वेल सर।
3: सर
0: कागज और बैग मेरी गाड़ी में रख दो।
3: यस सर।
2: आई एम सॉरी सर, आपका कोई पर्सनल लेटर नहीं है।
0: ओह इट्स ऑल राइट, खत टाइप हो गया?
2: यस सर।
0: ये लो, बाकी खत ऐसे ही यहीं छोड़ दो, सुबह डिक्टेट करवा दूंगा।
2: राइट सर।
0: राइट
2: सर। सर आप अपना पेन भूल गए थे।
0: ओह थैंक यू, मैं ग्रीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ?
2: नो थैंक यू सर, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है।
0: अच्छी बात है।
2: गुड नाइट सर।
0: गुड नाइट।

0: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है भाई। अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
1: विक्रम, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आन पहुँचे?
2: क्यों कमला, मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था क्या?
1: लेकिन मेरा आज यहाँ आने का बिल्कुल इरादा नहीं था।
2: तो फिर तुम यहाँ कैसे आई?
1: कॉलेज से घर पहुँची तो बहुत सोना सोना सा लगा, सोचा एक आध ऐसे तैयार कर लूँ, कॉफी निकाल कर बैठी तो अचानक याद आया कल विनीता का बर्थडे है। तुम जानो ये मॉडर्न लड़कियाँ बर्थडे पर प्रेजेंट नहीं दिया जाए तो अनकल्चर्ड की डिग्री दे डालती।
2: तो तुम विनीता के लिए प्रेजेंट खरीदने निकली?
1: ढूंढने निकली थी प्रेजेंट, मिल गए तो अब मिल ही गए हो तो कॉफी के लिए तो पूछ लो।
2: हाँ चलो, कहाँ चले?
1: सुना है ग्रीन लाइट में कॉफी के साथ साथ म्यूजिक मुफ्त मिलता है।
2: जी नहीं, म्यूजिक की कीमत वो कॉफी में ही लगा लेते हैं।
1: बड़े कंजूस होते जा रहे हो। हाँ भाई, मैं तुम्हारी वो तो नहीं हूँ ना। अच्छा चलो, कॉफी के पैसे अपने अपने।
2: तुम्हें डायलॉग सुनने का बहुत शौक है क्या? तुम चाहती हो मैं रोज रोज दिल पे हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं?
1: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर चलें ग्रीन लाइट?
2: चलो ना, लेकिन पहले अपना प्रेजेंट तो खरीद लो, दुकानें बंद हो जाएंगी।
1: प्रेजेंट खरीदने का आइडिया मैंने फिलहाल ड्रॉप कर दिया।
2: पैसे कम पड़ गए होंगे।
1: पैसे कम पड़ गए होंगे, आज ही पॉकेट मनी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है।
2: फिर तो ग्रीन लाइट का पूरा बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा।
1: तुम्हें शर्म नहीं आएगी?
2: बिल्कुल नहीं, तुमसे भला मुझे क्या शर्म आएगी?
1: मुझसे नहीं, वेटर से तो आएगी।
2: वहाँ तो बिल मैं ही पे करूंगा, तुम पैसे मुझे पहले से ही पकड़ा दे।
1: बड़े ठीक हो।
2: देख लो, तुम कॉलेज से सीधी घर चली गई, ये भी ना सोचा कि मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा, फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया।
1: जी हाँ, पूरे 10 मिनट गेट पर इंतजार किया था जाने से पहले।
2: 10 मिनट क्या बहुत होते हैं?
1: कभी कभी ऐसा लगता है जैसे 10 बरस बीत गए हो। फिर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पहुंचकर सुना सुना क्यों लग रहा था? इतनी सटल बातें अगर तुम समझ सकते होते तो अपना बेड़ा न पार सकता। चलो हमारे
2: I'm sorry, कमला, आज का प्रैक्टिकल बहुत लंबा था, लेकिन खत्म करते ही तुम्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ।
1: घर गए थे?
2: ना, मेरे दिल ने कहा तुम घर पर नहीं होगी, बल्कि जरूर कनॉट प्लेस में शॉपिंग करती हुई मिलोगी।
1: दिल ना हुआ, रडार हो गया।
2: जब मिलने की ख्वाहिश हो तो दिल की आवाज रडार से भी बढ़ के काम करती है। देख लो, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कुदरती तौर पर खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी सांसों की लहरें मेरे कदमों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाती हैं।
1: सुनो, ये आजकल के मॉडर्न राइटर्स ने कोई नई तरह के डायलॉग नहीं लिखे?
2: खुद ही तुम कहती हो कि मैं।
1: अब चलकर कॉफी पिलाओ, कितनी देर हो गई है। माँ ने कहा था अंधेरा होने से पहले घर लौट।
2: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन अम्माओं को अपनी बेटियों की इतनी फिक्र क्यों खाए रहती है। अगर बाहर से लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
1: तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा रहता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार भूल जाता है। फिर माँ बेचारी क्या करे, बेटी तो जानो उनके लिए पराया धन है, जिसे उसके मालिक के हवाले किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता।
2: तुम किसकी अमानत हो?
1: तुम्हें नहीं मालूम?
2: तुम बता दो।
1: मुझे भी नहीं मालूम।
2: ये कैसे हो सकता है?
1: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। कहा है तुम्हारा ग्रीन लाइट?
2: वो रहा।
1: चलो चलकर कॉफी पिए।
2: तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
1: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम।
2: तुम्हारी मर्जी।
1: सुनो, इनके यहाँ वो गाना है।
2: कौन सा?
1: छोड़ो, तुम्हें गाना सुनकर भी क्या समझ आएगी?
2: बस छोड़ गई मैदान।
1: क्या मतलब?
2: एक सवाल का सीधा जवाब देते हुए घबरा क्यों गई?
1: Shut up.
3: गुड इवनिंग अंकल।
4: ओह गुड इवनिंग विक्रम। आओ आओ।
3: हेलो आंटी।
1: अच्छे हो विक्की?
3: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी।
4: अरे भाई, ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो।

0: बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
1: किवी बहुत नाराज है तुमसे। सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो। वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
2: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ। अरे ये कहाँ है सब लोग?
1: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ, मैं चलूं।
2: नहीं आंटी, आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ।
0: He is a smart boy.
1: बहुत, देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो।
0: अरे भाई, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
1: हूँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
0: मैंने गौर नहीं किया।
1: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है, जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना। आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
0: देख रहा हूँ।
1: किवी इज़ अ लकी गर्ल।

यादों की परछाइयां, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनिएगा कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय।

0: के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम में हवे पछी आप सांभळशो अमाल मलिक अने अरिजीत सिंघना स्वरमा एयरलिफ्ट फिल्म थी आ गीत। संगीतकार अमाल मलिक, गीतकार कुमार।

कार्यक्रम में आप सांभळी रह्या था फिल्म अब्दुल आनास वर्मा सैयारा फिल्म थी आ गीत। संगीतकार तनिष्क बागची, गीतकार इरशाद कामिल। चित्रलेख कार्यक्रम में हवे पछी आप सांभळशो श्रेया घोषालना स्वरमा मेट्रो हिंदीनो फिल्म थी आ गीत। संगीतकार प्रीतम, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य।

कार्यक्रममा आप सांभळी रह्या था एआर रहमानना स्वरमा गुरु फिल्मनुं आ गीत। संगीतकार एआर रहमान, गीतकार गुलजार। कार्यक्रममां हवे पछी आप सांभळशो एआर रहमानना स्वरमा हाईवे फिल्मथी आ गीत। संगीतकार

0: આકાશવાણી તારીખ 8 જૂન 1936 થી સતત આપની સેવામાં આકાશવાણી આકાશવાણી એક મેઘનો 90 વર્ષનો સાથ, એક અકબંધ અતૂટ વિશ્વાસ, એટલે આકાશવાણી આકાશવાણી.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए. प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया. जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी. सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला. भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे. मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया. और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया. इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया.
3: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी.
2: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.
3: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन.
2: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है. एक रिपोर्ट.
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है. जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया. इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला. उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला. पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं. वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है. शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है. श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं.

0: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: Against the assessment of
0: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल

स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आरजू फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

दूसरा आदमी, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया और जयदेव का संगीतबद्ध किया तुम्हारे लिए फिल्म का गीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मोहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: पिटारा,
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

ने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

ಯ ಕಚತುರ ನಾರ ಅಮಚೋರ.

0: नाटक गाया।
1: कार्यक्रम में आप सांभळी रह्या था किशोर कुमार अने भंडारेना स्वर में पड़ोसन फिल्मनो आ गीत। संगीत आप्युं हतुं आर डी बर्मने, गीतना शब्दों आप्या था राजेंद्र किशने। कार्यक्रम में हवे पछी आप सांभळशो किशोर कुमारना स्वर में ब्लेकमेल फिल्म थी आ गीत। संगीतकार कल्याणजी आणंदजी, गीतकार राजेंद्र किशन।

कब तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में, सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

0: बरसा वो न यूं हम दम तुम्हें ना दो अदा की कसम जल्दी से बोल दो ये राज खोल दो पर्दा उठा दो सनम
1: हर दिल

रात ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत, आती है तो आ जाए मौत बेशक कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: चार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in